0: पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with two Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international

0: మీరు కొత్తగా ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారా? అయితే మా ఆకాశవాణి క్లాస్మేట్స్ తో పంచుకోండి. ప్రకటనల కోసం 0402324052.
1: ఆకాశవాణి సమయం 8:00. సమాచార ప్రభాత్ ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే వింటారు.
2: నమస్కార్. ఆకాశవాణి సే సమాచార్ ప్రభాత్ కే సాథ్ మే జాగృతి శర్మ. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की. सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया. सभी प्रतिबंध हटाए. अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है. फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया. और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की. बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है. महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे. वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे. प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था. भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे. श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है. लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के स्टार्ट की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की

0: रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टिपत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काले रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है, बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है, वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची

0: और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत। लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, NCERT की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक LPG आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeni, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi today. The meeting, being organised by the Narcotics Control Bureau, NCB, will bring together representatives of central ministries, state governments and drug law enforcement agencies to review and strengthen efforts to combat drug trafficking and drug abuse across the country. On the occasion, Mr. Shah will release the vision document on narcotics control 2026-29, which has been prepared through extensive consultations with various stakeholders. The Home Minister will also release the NCB Annual Report 2025 and inaugurate newly built NCB zonal offices in Jammu and Guwahati. In a major relief to industrial and commercial LPG consumers, government

0: में हम जानेंगे कि युवा नशे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, इसके क्या परिणाम हैं और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की भूमिका किस प्रकार लोगों को एक नई जिंदगी देने में सहायक बनती है। आज हमारे साथ हैं देविका जी, जो नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र से जुड़ी हुई है। साथ ही हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने कभी नशा की चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और सही सहायता के बल पर आज एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी रहे हैं। ये अपनी जीवन के अनुभव और संघर्ष की कहानी हम सबके साथ साझा करेंगे और इसी विशेष चर्चा को प्रस्तुत कर रही है सीमा कुमारी। तो आइए सुनते हैं ये विशेष चर्चा जो हमें नशा के खतरों से अवगत कराएगा।
1: नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर आकाशवाणी हैदराबाद में हम दो अतिथियों के साथ मौजूद हैं, जो कि हमें यह बताएंगे कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए कैसे एक गंभीर चुनौती है। हमारे साथ जो हमारे मार्गदर्शक हैं देविका रानी जी, उन्होंने कैसे सही मार्गदर्शन और कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति, परिवार के सहयोग से समस्या पर विजय प्राप्त की जा सकती है, इसके बारे में प्रकाश डालेंगी। और इसके साथ ही साथ हमारे जो एक विशेष अतिथि हैं, जो कि स्वयं नशे की लत का सामना जिन्होंने किया है, उससे उन्होंने संघर्ष भी किया है और सफलतापूर्वक उससे बाहर निकलकर अपने जीवन को नई दिशा दी है, तो आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सीमा जी।
1: सबसे पहले हम आपसे ही शुरू करेंगे देविका जी, एक मार्गदर्शक के रूप में युवाओं को नशे से दूर रखने में आप अपनी भूमिका को किस प्रकार देखती हैं?
2: सीमा जी, मैं 26 इयर्स चालू है, तो इन 26 इयर्स में मैंने बहुत सारे एडिक्ट्स है या पीपल विथ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स है उनके साथ मैंने काम किया, उनके साथ ही ने फैमिलीज के साथ भी काम किया। इम्पॉर्टेंट चीज मैंने सीखा है मेरे जर्नी ऑफ दिस प्रोफेशन में कि लोगों को कंट्रोल करना या क्या नहीं करना क्या करना, उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज है उनका बात सुनना नॉन जजमेंटल एटीट्यूड से। वो कमी थी ए सफरिंग ए जर्नी ऑफ डिसीज में बहुत सारे लोग सफर होने का मुख्य कारण है कि वो लोगों का बात उनके में क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो गया, उनके सुनने में पीपल वर नॉट लिसनिंग टू देम और देर वॉज लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गैप्स है विद द फैमिली मेंबर्स और विद द पीपल इन अ कम्युनिटी। दैट इज वेयर दिस डिसीज हैज इंक्रीज और रादर प्रोग्रेस्ड इन अ मच मोर सीवियर। सो वॉट आई हैव लर्न एज अ मेंटर इज पहले ये लोगों को विदाउट जजिंग देम नॉन जजमेंटल एटीट्यूड नॉन पिनिटिव एटीट्यूड से देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दैट इज वॉट अ क्वालिटी मेरे अंदर थी, दैट इज वेयर आई हैव सर्वाइव्ड इन दिस प्रोफेशन फॉर 26 इयर्स। अनदर थिंग इज लॉट ऑफ पीपल डू कम बिकॉज दे लैक सर्टन स्किल्स। सो एज अ मेंटर वॉट वी आर फोकसिंग ऑन इज हर एक का यू नो यू कैन नॉट इट हैज टू बी टेलर मेड। सबका प्रॉब्लम एक ही है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, पर हर एक का कारण अलग अलग होता है, तो यू हैव टू गो टू दैट लेवल ऑफ रूट कॉजेस। बहुत सारे चीज हम ये देखते हैं कि कोपिंग स्किल्स लैकिंग है, माने लाइफ स्किल्स, जैसे कम्युनिकेट नहीं कर पाना, एसर्टिव नहीं रहना या नेगेटिव इमोशनल स्टेट से वो कैसे कोप अप करना। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स वी विल बी वर्किंग ऑन व्हेन वी आर वर्किंग विद द पेशेंट। देन अनदर थिंग इज ये ट्रीटमेंट ही नहीं है, वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन अ प्रिवेंशन, माने वी आर वर्किंग इन फ्रॉम अ स्कूल लेवल, क्योंकि प्रिवेंशन से ही इसका हमें यू नो पॉसिबल होता
1: जी,
2: है।
1: जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब हम आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आपकी अपनी जर्नी ही ऐसी रही है जिसमें आपने नशे की लत जो है वो लगी भी और उससे आप उभरे भी, तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपको कब महसूस हुआ कि नशा आपके जीवन पर नेगेटिव इफेक्ट्स डाल रहा है।
3: थैंक यू मैम। सो एक्चुअली मेरी जिंदगी में जब मैं देखा चाहे तो मैंने नशा बहुत लेट शुरू किया था। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 24, मगर मेरे अदर इश्यूज भी थे बचपन से, थोड़ा गेमिंग एडिक्शन था, थोड़ा पोर्नोग्राफी के साइड भी थोड़ा प्रॉब्लम था, एंड बट स्लोली दैट वाज कंट्रोल्ड, वो सब हुआ था। एंड मैंने अपने दोस्तों को देखा था नशा करते हुए एंड दारू या दूसरे नशे करते हुए, एंड उसके कारण एक घिन आया था कि इससे दूरी रहना बेहतर है, और मैं बहुत पढ़ता था तो नशा करने से क्या साइड इफेक्ट है, इसीलिए दूर रहता था, और डर भी था कि घर पे सब कोई नहीं करते क्यों करना है, उसके कारण बहुत साल दूर था। मगर 24 ईयर्स

0: में जब मेरे पहली बार पढ़ाई के लिए दूसरा शहर गया एंड दैट वाज द टाइम मैंने नशा करना शुरू किया एंड नशा का प्रभाव इमीडिएटली मुझे पता चलना लगा क्योंकि वो मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करना शुरू हो गया. मैं बहुत सारे डिसऑनेस्ट बनना शुरू हो गया फैमिली के साथ एंड स्लोली एक टाइम पे नशा बढ़ते गया और जिंदगी में एक मोड आया कि मैं सारा चीज खोते आ गया. पहले नौकरी चला गया, उसके बाद पर्सनल रिलेशनशिप्स, मेरे बचपन के जो दोस्त थे, मेरे 2 साल से मेरे दोस्त थे, वो भी छोड़ के चले गए एंड नौकरी करने के लायक नहीं था. घर पे भी रिलेशनशिप्स अच्छा नहीं था और फाइनेंशियल डेट में मैं चलना शुरू हो गया और ये सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए एंड फाइनल टिपिंग पॉइंट ये था कि मुझे बहुत सुसाइडल टेंडेंसीज तक मैं चला गया और नशा से दूर भी नहीं रह पाया, इसलिए मैं सुसाइड करने के बहुत सोच रहा था. तो दोज वर मेजर थिंग्स विच रियली मेड मी थिंक एंड एस्पेशली मेरा एक साइकियाट्रिस्ट दोस्त है जो मेरा हालत देखा था एंड वो अभी मैं आई मीन अ गुड वेट बट दैट टाइम आई वॉज लाइक 25 किलोज अंडर वेट. उसने मेरा हालत देख के, तब तक मैं डिनाइल में था, उसने मेरा हालत देख के बोला था कि बॉस तेरा एडिक्शन सिम्टम्स बहुत दिख रहे हैं, अभी तुम रोक के मदद नहीं लोगे तो तेरा जिंदगी तीन ही तीन मोड ले सकता है, जेल या इंस्टीट्यूशन या मर जाओगे. वो एक वेकअप कॉल था कि कुछ करना है इसके बारे में. तब रिकवरी के मोड पे देखना शुरू किया.
1: बहुत बहुत ही बड़ी बोल सकती हूँ, बहुत ही दुखी जो आपका सफर रहा वो दुख का रहा है. मैं आपके पास आना चाहूंगी देविका जी, आपके अनुभव में जैसे कि ये खुद भी युवा हैं, इनके नशे की तरफ आकर्षित होने के प्रमुख कारण क्या क्या है?
2: मैं इसको कैटेगराइज करूंगी, जैसे हार्म प्रिवेंशन प्रोग्राम में हम बोलते हैं 3 P's सबको याद रखना जरूरी है. फर्स्ट इट स्टार्ट्स विद अ प्लेजर, एक क्यूरियोसिटी. वो यंग एज में क्या होता है, एडोलेसेंट एज में, कि हाँ सब कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे, उसमें क्या आ रहा है, व्हाई पीपल आर डूइंग अगेन एंड अगेन. सो क्यूरियोसिटी, वो प्रेशर हो जाता है. प्लेजर एक चीज है, सेकेंड इज अ प्रेशर. सो इट कैन बी एन एकेडमिक प्रेशर, इट कैन बी अ प्रेशर फ्रॉम द पीयर्स. सो ज्यादातर एडोलेसेंट एज में हम पीयर प्रेशर का, पीयर इन्फ्लुएंस का ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो. द थर्ड पी इज अ प्रॉब्लम सिचुएशन. ऐसा नहीं कि किसी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहते, बट द थिंग इज यहाँ पे बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशन दे डोंट नो हाउ टू फेस इट, हाउ टू कोप विथ इट और हाउ टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, दैट इज वेयर दे रिसोर्ट टू यूजिंग द सब्सटेंसेस. यही नहीं है, बट लॉट ऑफ एकेडमिक प्रेशर, देर इज अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑल्सो वी सी, लाइक एंग्जाइटी, बहुत सारे सेल्फ एस्टीम इश्यूज युवा में हम देखते हैं. बिकॉज ऑफ दैट दे वॉन्टेड ऑलवेज सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड. सो ऑल दीज कैन बी द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स. नॉट ओनली दैट, ये एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी भी अभी बहुत है एंड मीडिया इन्फ्लुएंस इज हैविंग अ ग्रेटर रोल इन सब्सटेंस यूज अभी यंगस्टर्स में. सो यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस एंड दे डोंट हैव द रियल लाइफ कनेक्शंस आर लैकिंग एंड लगता है कि बहुत सारे फॉलोअर्स है आपको सोशल में, बट यू डोंट हैव अ रियल फ्रेंड. सो दैट काइंड ऑफ लोनलीनेस और बीइंग आइसोलेटेड इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स वी सी इन अ यंगस्टर्स. माने दे कांट ओपन अप देयर हार्ट टू एनीबडी, इवन द फैमिली मेंबर्स, बिकॉज द पेरेंटल लैक ऑफ सुपरविजन ऑल्सो वी आर सीइंग वन ऑफ द प्रोमिनेंट फैक्टर्स. सो यू सी द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स. हाँ, मैं कैटेगराइज करूंगी कि हर एक बच्चे की, यू नो, ह्यूमन बींग का जिंदगी में प्रोटेक्टिव और रिस्क फैक्टर्स रहते हैं. सो रिस्क फैक्टर्स अभी हम ज्यादा देख रहे हैं एंड दैट इज वेयर आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, जैसे लैक ऑफ डिसिप्लिन हो, लैक ऑफ सुपरविजन हो, एकेडमिक स्ट्रेस और लैक ऑफ कोपिंग स्किल्स हो, बीइंग लोनली या सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो, ऑल दीज आर रिसोर्टिंग देम टू अवॉइड दीज प्रोटेक्टिंग फैक्टर्स एंड गेटिंग इन टू दिस प्रॉब्लम.
1: जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं, क्योंकि अभी तो बात हो गई कि नशा, जो नशे की लत थी, उसकी शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई और कब लगा कि आपको वेकअप कॉल आया है इसके लिए. लेकिन जब आपने नशा छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
0: तो एक चीज ऐसा हो गया था कि जैसे आई स्टार्टेड टेकिंग साइकियाट्रिक हेल्प, सो थेरेपी को जा रहा था एंड मेडिकेशन भी दे रहे थे एंड डॉक्टर ने क्लियरली मुझे बताया था कि इस मेडिकेशन के साथ तुम नशा करोगे तो तेरा ब्रेन के लिए बहुत हानिकारक है, दूसरे ऑर्गन्स के लिए हानिकारक है, तुम मर भी सकते हो. मगर वो डर था कि मैं मर जाऊंगा ये मिक्स करूंगा तो. मगर एक दो दिन ही मैं रुक पाया, वो नशा की जो लत है फिर से मुझे खींच के नशा के वो. सो मैं मेडिकेशंस मिक्स कर रहा था अपने नशे के साथ एंड दैट टुक मी टू अ वेरी बैड स्पेस मेंटली. एंड एक और चीज था कि मेरा सर्कल जो था, मेरा अच्छा खासा जो सर्कल था, जो भी फ्रेंड्स थे, वो सब छोड़ के चले गए. अभी जो सर्कल मैंने बनाया वो ड्रग एडिक्ट्स थे, नहीं तो पेडलर्स थे, नहीं तो वेरी क्रॉनिक अल्कोहलिक्स थे.

0: जो मेरे टाइप ऑफ यूजिंग को वो एंकरेज कर सकते हैं, उनके साथ ही मैं करता था। तो वो सर्कल से बाहर आना, और नॉर्मल सोशल ओकेजन्स पे जहाँ अभी अल्कोहल और ड्रग्स भी बहुत कॉमन हो गया है, उनको मैं जाके ना कैसा बोलूँ, मैं नहीं करूँगा कैसा बोलूँ, या दूसरे हॉबीज कैसा ढूंढूँ, या क्या करना है, क्योंकि मैं रोक नहीं पा रहा था। जो भी मेरा एनवायरनमेंट था सपोर्ट करने का, जो सपोर्ट सिस्टम्स मिल रहे थे, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तो दीज वर द चैलेंजेस जो दैट आई फेस्ड ड्यूरिंग दैट टाइम।
1: जी, यानी ना कैसे बोलना है, ये सबसे बड़ी चैलेंज थी। मैं आपके पास आना चाहूंगी देविका जी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो नशे का बढ़ता हुआ खतरा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ परिवार ही नहीं, मेरे ख्याल से जो जीवन मूल्य है, नैतिक शिक्षा है, या फिर खास करके अगर मैं बात करूं विद्यालय और जो मार्गदर्शकों की भूमिका है, वो बहुत बढ़ जाती है। तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगी?
2: वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम एक ही कोने में एंगल में देख रहे हैं कि बच्चे सफर हो रहे, वहां से शुरुआत हो रही है एडोलेसेंट एज में। आपको हमें ये अगर इसको प्रिवेंट करना है या इसके ऊपर ध्यान देना है तो हमें कोलैबोरेटिव अप्रोच बहुत जरूरी है। इसी के ऊपर ज्यादातर हम अभी फोकस कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव अप्रोच। जैसे एनजीओस आर वर्किंग, एनजीओस कब काम करते हैं, प्रिवेंशन प्रोग्राम्स में काम करते हैं या ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, सो जो ऑलरेडी सफरिंग पीपल हैं वो आके वहां पे मदद लेते हैं। बट अगर यू आर लुकिंग एट अ प्राइमरी प्रिवेंशन लेवल, टीचर, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैज अ वाइटल रोल टू प्ले हियर। सो यहाँ पे हम यू कैन आइडेंटिफाई द अर्ली वार्निंग साइंस। वी से दैट वॉट आर द अर्ली वार्निंग साइंस, इवन द पेरेंट कम्युनिटी, टीचिंग कम्युनिटी एंड द कम्युनिटी लेवल सब साथ में ये समस्या की एड्रेस करेंगे तो हमें एक सोल्यूशन मिल सकता है। सो हियर आई वुड इन्फॉर्म द पेरेंट्स एंड द टीचर्स टू वॉच, बिकॉज 70% 30% द चाइल्ड इज लिविंग इन दिस टू प्लेसेस। सो वेयर टीचर्स, इफ दे सी दैट एक बच्चा ग्रेड्स ड्रॉप हो रहा है, अनएबल टू फोकस, अटेंशन नहीं है, देर आर सर्टन बिहेवियर इश्यूज है, देर इज समथिंग हम अर्ली वार्निंग साइंस में हम नोटिस करते हैं। सो द टीचर हैज टू बी एजुकेटेड अबाउट वॉट आर द थिंग्स, ही इज गेटिंग आइसोलेटेड, नॉट टॉकिंग टू एवरीबडी, एंड ग्रेड्स आर ड्रॉपिंग, ऑलवेज फीलिंग स्लीपी, अनहाइजीनिक है, देर शैबिली ड्रेस, बिकॉज दे डोंट केयर ऑफ द पर्सनल हाइजीन। इवन पेरेंट्स हैज टू सी दैट स्पेशली सर्टन ड्रग्स, रेड ब्लड शडाइस है, लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑल द टाइम इन अ लाउड वॉइस, और शटिंग द डोर, बाहर नहीं आ रहे, सबके साथ आंख नहीं मिला रहे, एंड दे आर अनेबल टू रजिस्टर द इन्फॉर्मेशन। स्कूल में जब बताते तो अटेंशन नहीं रहता है, एंड दे के नॉट रिट्रीव द इन्फॉर्मेशन। जब आप अ क्वेश्चन पूछते हो तो दे आर कन्फ्यूज। सो ये सब, नॉट ओनली दैट, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, मूड स्विंग्स है, एंड सीक्रेसी है घर में, पेरेंट्स कैन नोटिस द मनी इज मिसिंग एंड दे आर टेलिंग लाइज, एंड देयर फ्रेंड सर्कल ऑल्सो चेंजेस। सो ऑल दिस, एंड ऑलवेज दे प्रिफर टू बी अलोन, और रात में ज्यादा दे आर अवेक एंड दे आर नॉट गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। सो ऑल दीज आर द इंडिकेटर्स वेयर यू कैन से दैट समथिंग इज नॉट ओके विथ माई चाइल्ड, वी नीड टू एड्रेस इट। मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तक, आई वुड से 5 साल के पहले तक ऐसा था कि पेरेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड, पेरेंट्स फील द स्कूल इज रेस्पॉन्सिबल, सो देर इज नो कम्युनिकेशन। सो वो गैप फिल करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम वी आर लुकिंग एट अ वेरी पॉजिटिव सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम।
1: जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने, यानी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनती है, सिर्फ मार्गदर्शकों की ही नहीं बनती है। हम आपके पास आना चाहेंगे और बात करेंगे रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास और काउंसलिंग की। तो इसने आपको कैसे मदद की नशे की मतलब जो लत है उसको छोड़ने में?
0: तो मेरे पहली बार जब मैंने थेरेपी शुरू किया था, फर्स्ट टाइम मैं सोच रहा था कि सिर्फ एडिक्शन ही मेरा प्रॉब्लम है, और थेरेपी के साथ काउंसलिंग जब ले रहा था, द साइकियाट्रिस्ट डायग्नोज मी विथ पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंड विच आई नेवर थॉट दैट आई हैड, एंड कुछ सारे चीज मेरे जिंदगी के बारे में पूछ रहे थे और कुछ कुछ पता चल रहा था। तो मैंने पहली बार देखना शुरू किया कि एडिक्शन एक सर्फेशियल प्रॉब्लम था मेरा, कुछ अंडर बहुत डीप पर्सनैलिटी इश्यूज है जो एक्चुअली एडिक्शन के रूप में बाहर आ रहे थे, एंड उस चीज को देखने में मुझे साइकियाट्री बहुत हेल्प किया। एंड एक और चीज था कि मैं बहुत सुसाइडल बन रहा था क्योंकि मैं रोक नहीं पा रहा था अपने लत को, कैसे बाहर आना नहीं पता चल रहा था। सो उस समय सुसाइड करने से मुझे जो चीज मुझे बचाया, मैं मानता हूँ कि साइकियाट्रिक हेल्प मुझे बचाया था।
1: मेरे ख्याल से मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, जो भी श्रोता हमारी ये सुन रहे हैं वो इस बात को जरूर नोट करें कि साइकियाट्रिस्ट से मिलना, साइकोलॉजिस्ट से मिलना कोई सोशल टैबू नहीं है, ये पूरी तरीके से मिथ्या है। अगर

0: आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं या फिर अपने समाज के किसी ऐसे व्यक्ति की को सुरक्षा कर सकते हैं, तो ये समाज के कल्याण के लिए ही साबित होगा। जी आप बताएं।
1: Yeah, so psychiatric help and it helped me at that moment to protect me from myself. And uske baad I had to take additional help, you know, kyunki ye sab support systems rehte hue bhi मैं रोक नहीं पा रहा था कैसे बाहर आना है। तब द अदर फेलोशिप्स लाइक अल्कोहलिक्स एनोनिमस, नार्कोटिक्स एनोनिमस, ये फेलोशिप्स के बारे में मुझे जानकारी मिला था। साइकियाट्रिस्ट मेरा जो दोस्त था जो ने बताया था, उसने मुझे एक मेंबर से मिलवाया था और वो उसका मदद भी ले रहा था। सो एक्चुअली द इंट्रोडक्शन
0: तो मेरा, आप हमारे श्रोताओं की इसके हेल्पलाइन नंबर भी बताएं।
1: या श्योर, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हेल्पलाइन नंबर बताऊंगा। उसका हेल्पलाइन नंबर है 9666-466-119। ये टोल फ्री नंबर है एंड 24/7 आपका मदद मिलेगा एंड दिस इज फ्री हेल्प। कोई भी पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। जिसको भी एक इच्छा है दूर रहने का उनके लिए ये मुफ्त।
0: जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं आपके पास आना चाहूंगी देविका जी, क्योंकि देखिए अभी हमने बात की कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को मजबूत कैसे लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे कि खेल हो गया या फिर सांस्कृतिक गतिविधियां हो गई या फिर जो क्रिएटिव वर्क होते हैं, वो कैसे युवाओं को नशे से दूर रखने में सहायक होते हैं?
2: सो हम इसको बताते हैं कि पॉजिटिव एडिक्शंस माने सी, हम बचपन से नॉट ओनली एजुकेशन में हमारा सब्जेक्ट्स ही नहीं है, बट हम स्पोर्ट्स में या क्रिएटिव आर्ट्स में भी हमारा एक क्लास चलता है। अभी एजुकेशन सिस्टम CBSE ने ये बहुत एम्फसाइज किया है कि हर एक को ना अपना एक पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। वो लाइफ स्किल करिकुलम को भी इसने एकेडमिक करिकुलम ले मर्ज किया है। नॉट ओनली दैट, अभी एडिक्शन रिलेटेड इश्यूज का, अगर ये खाली हम आज सब्सटेंस यूज बता रहे हैं, बट देर आर लॉट ऑफ अदर एडिक्शंस ऑल्सो वेयर वी आर सीइंग प्रॉब्लम्स इन यंग चिल्ड्रन राइट नाउ। वो गेमिंग हो सकता है, इवन स्टूडेंट पॉपुलेशन आर इन्वॉल्व इन गैम्बलिंग एडिक्शन। सो ये बहुत सारे, जैसे अभी बताए कि पॉन एडिक्शन चल रहा है, बच्चों में बहुत सारा ये देख रहे हैं हम। सो इट इज अ बिग चैलेंजिंग फॉर अस, एंड एक प्रॉब्लम को आइसोलेट करके हम नहीं देख सकते, इट इज गोइंग हैंड इन हैंड। सो पैरेलली ये सब देख रहे हैं एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स वी आर सीइंग इन चिल्ड्रन। सो अगर हम इसको दूर करना है, जैसे आपने बताया कि वी हैव टू लुक इन टू द पॉजिटिव एडिक्शन, एंड बचपन से हमें जो आपका पोटेंशियल है, आपका पर्पसफुल लाइफ में क्या पर्पस है आपका, आपका गोल सेटिंग पे ध्यान देना, साथ साथ में नॉट ओनली एकेडमिक गोल्स और द financial goals you have in life, but also you need to have something which makes your soul happy, joy. So these are the things, mane hobby building is very important. I'll tell every student that the hobby building is very very important, because jab tak hum jiyenge this is where it makes your soul happy, because this is purely we are doing it for ourselves, नॉट फॉर मनी और नॉट फॉर आर सर्वाइवल। सो आपका एकेडमिक बाकी अदर गोल्स के साथ में भी अपने आप को जिंदा रखना है, हैप्पी रखना है, तो एक हॉबी बिल्डिंग, वी कॉल देम एज पॉजिटिव एडिक्शन, ये स्पोर्ट हो सकता है या म्यूजिक हो सकता है, आर्ट हो सकता है, यू कैन राइट। सो आई थिंक इफ आई हैव रीडिस्कवर्ड माई सेल्फ, एवरी वन कैन डू दैट, ऑल ऑफ अस हैव दैट पोटेंशियल विच वी कैन यूज।
0: बिल्कुल सही बात है, यानी अपने आप को ऐसी चीजों में भी आप रखें जो आपको खुद को खुश रखता हो और स्वस्थ रखता हो। आप क्योंकि आप खुद ही, आपने देखा होगा आपका परिवार कितना सफर कर रहा है आपके नशे की लत होने की वजह से, तो आप उन लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे जो वर्तमान में नशे की लत से जूझ रहे हैं और उनकी जो पारिवारिक जो सदस्य हैं वो उनके साथ साथ सफर कर रहे हैं?
1: जिन लोगों को नशा का प्रॉब्लम है, मैं जरूर बोलूंगा कि दो चीज करने के लिए, एक है साइकियाट्रिक एंड रिहैबिलिटेटिव हेल्प लेने का, और दूसरा चीज ये है कि ये फेलोशिप्स जो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस या नार्कोटिक्स एनोनिमस, और बहुत सारे फेलोशिप्स है, गैम्बलिंग एनोनिमस भी है और सेक्स एडिक्स एनोनिमस भी है, बहुत सारे ऐसा फेलोशिप्स है।
0: अच्छा, अगर कोई नशे की लत से जूझ रहा है, अगर उन्हें ये कोई मतलब जैसे जो आप साइट्स बता रहे हैं, अगर उन्हें ढूंढना हो तो वो कैसे ढूंढ पाएंगे?
1: सिंपली गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, ये बहुत सारा अवेलेबल है गूगल पे।
0: जी
1: सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगा हेल्पलाइन मिल जाएंगे और जो भी मीटिंग्स है सिटी में, कहाँ ऑनलाइन भी मीटिंग्स है, ऑफलाइन भी मीटिंग्स है, कहाँ जाके क्या करना है, आपको सारे इन्फॉर्मेशन वो वेबसाइट पे मिल जाएंगे।
0: हमारे श्रोता जो भी ये प्रोग्राम कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो ये नोट करें कि उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर बैठे ही अपने गूगल पे टाइप करके रिहैबिलिटेशन

0: काउंसलिंग दोनों ही ले सकते हैं और वो भी निःशुल्क। जी हाँ, आप बता रहे थे, तो फिर ऐसे परिवार के सदस्यों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे?
1: सो परिवार के सदस्यों को मैंने अपने जो परिवार में देखा था कि बिकॉज ऑफ माय एडिक्शन माय फैमिली गॉट अफेक्टेड, माय फैमिली मेंबर्स को डिप्रेशन का इश्यू आ रहा था, दे बिकेम वेरी न्यूरोटिक एंड मुझे ये बताया गया था कि मैं नशा के पीछे भागते रहता हूँ और मेरे फैमिली और सदस्य मेरे पीछे भागते रहते, हम सब गोल गोल घूम रहे। एंड एक चीज है कि मैंने अपने अनुभव से सीखा और देखा, नशा का लत लगना एक बहुत सारा रिस्क है एंड उस रिस्क में एक पार करने के बाद उस एडिक्ट को बचाने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो फैमिली सोचते रहता है कि हम बचा सकते हैं, हम ये कुछ भी कर सकते हैं, मगर बिना एनेबल करके उसको अपने एडिक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए कैसे हेल्प करेंगे। और फैमिलीज के लिए भी ऐसा फेलोशिप्स है, एलेनॉन बोल के अल्कोहलिक्स एनॉनमस का एक सिस्टर फेलोशिप है जो फैमिली एंड

0: ये फेलोशिप्स का भी मदद लेना, और सबसे पहले ये चीज अंदर से निकाल देना कि मैं उस एडिक्ट को मदद कर सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ हम सहायता दे सकते हैं, वो सहायता लेगा कि नहीं, वो बाहर आएगा नहीं, उनके हाथ में नहीं है, तो वो एक डेल्यूजन से थोड़ा बाहर आने का
1: और
0: कोशिश
1: साइकियाट्रिस्ट
0: करना।
1: और साइकोलॉजिस्ट से मिलने और काउंसलर से मिलने की जरूरत होती है, इंस्टीड ऑफ की सेल्फ हेल्प जो वो उतना कर पाते हैं, किसी अगर एक्सपर्ट के पास ले जाएं तो इसका निदान संभव है। जैसे कि ऐसा माना जाता है, एक मान लीजिए सोशल स्टिग्मा की तरह ही मान लीजिए, कि हर कोई कह देता है कि अगर आप नशा कर रहे हैं तो 100% मुक्ति असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो आप अपने आप को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में क्या अंतर महसूस करते हैं, मतलब आप क्या 100% रिकवर हो पाए हैं? अभी आपका जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो कंपेरेटिवली कितना बेहतर है?
0: कंपेरेटिवली बहुत बेहतर है मैम, क्योंकि मेरा फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव करना शुरू हुआ, क्योंकि अच्छा सा खा पा रहा हूँ, भूख भी लग रहा है और नींद भी कुछ समय लगा है, नींद सोने के लिए वो सब रेगुलराइज होने में थोड़ा समय लगा है। नाउ फिजिकली आई एम रियली गुड, और उसके लिए अभी ज्यादा एक्सरसाइज या जो भी जिम जाना, ये सब अदर हॉबीज भी इनकलकेट करना शुरू किया। और मेंटल एस्पेक्ट के मामले में उसके ऊपर थोड़ा वर्क करते रहना है, क्योंकि जब एडिक्शन बंद कर देते हैं एक कमी फील करते रहते हैं, तो उस कमी को महसूस करने समय क्या करना है, लाइक काउंसलिंग हेल्प मी लुक एट वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, किधर से आ रहा है ये कमी, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोग्राम और ये सर्विस एस्पेक्ट जो है वो कमी भी फिलअप कर रहा है। तो आई हैव टू बी रियली केयरफुल, ये नहीं सोचना है कि नशा चला गया, ड्रग चला गया तो मैं ठीक हो गया, वो सिर्फ एक सिम्टम चला गया, मगर मेरे में जो भी है मेरा प्रवर्तन वो भी उसका ध्यान करना है। और ये सब मदद लेके सीरियस लाइफ और डेथ के, जैसे हर दिन मेरा एक लाइफ और डेथ का लाइन पे हूं मैं, ऐसा जीने का कोशिश करना है। और एंड आई एम हैप्पी टुडे, लाइक कंपेयर टू हाउ आई वाज, अभी वो सुसाइडल थॉट्स नहीं है, खुद का काम कर पा रहा हूँ, और मेरे दोस्त जो खो गए वो वापस आ गए, अभी इस प्रोग्राम के जब आ रहा था मैं अपने बचपन के दोस्त से बात करके आ रहा था, तो ये सब चेंजेस आना शुरू हुआ स्लोली, तो एक अच्छा था।
1: यानी बेहतरी जो है वो आती है, वक्त लगता है। देविका जी, चलते चलते सारे युवाओं को जो भारत को नशा मुक्ति की तरफ लेके जा सकते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आप?
2: ये संदेश देने के पहले मैं ऐड करूंगी अभी जो बताए, हर एक को याद रखना है ये बीमारी जो है ये क्रॉनिक है, माने आज आप करो तो दूसरा दिन आप एडिक्ट नहीं बन जाते हो, तो उनका समय लगता है, इसलिए माने देयर इज अ पैटर्न ऑफ यूज एंड इट्स अ ब्रेन डिजीज एंड इट्स अ रिलैप्स प्रोन डिजीज। सो ये क्यों बता रहा है ब्रेन डिजीज, बिकॉज दिस इज इनक्यूरेबल है बट ये ट्रीटेबल है। सो यहाँ पे हमें रिकवरी भी लाइफ लॉन्ग जर्नी है, जैसे सिम्टम्स आपके कम हो जाएंगे पर आपको ध्यान रखना है, अपने प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को बढ़ाना है और सस्टेन रखना है, ये बहुत जरूरी है। एंड मैं एक संदेश देती हूँ कि इसका प्रिवेंशन ही बेहतर है, या आप इसके चॉइस इन्फॉर्म्ड चॉइस लेना बहुत जरूरी है। सो चूज वाइजली, द फर्स्ट पॉइंट आई विल टेल टू एवरी एडोलेसेंट और एवरी स्टूडेंट इज दैट चूज वाइजली हु आर द पीपल यू आर चूजिंग, विच काइंड ऑफ एनवायरमेंट यू वॉन्ट टू बी इन, वॉट काइंड ऑफ सोशल सर्कल। सो दैट इज अ पहला आपका चॉइस है। द सेकेंड वन इज एवरी वन ऑफ अस हैव प्रॉब्लम्स, हमारा स्ट्रेस है, सो नई चीज नहीं है प्रॉब्लम्स, एवरीबडी हैज इट स्ट्रेस, बट वी हैव टू लर्न हाउ टू एंड्यूर इट एंड हाउ टू अंडरस्टैंड इट एंड हाउ टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स। कोपिंग स्किल्स पे ध्यान करो, एंड आपका अभी सीबीएसई करिकुलम और अच्छा लाइफ स्किल्स पे ध्यान दे रहा है, तो आप यू जस्ट फोकस ऑन इट व्हाट योर टीचर्स आर टेलिंग, एंड पेरेंट ऑल्सो हैज टू इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद द पॉजिटिव रिसोर्सेज, जैसे पेरेंट है इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जितना भी हम कुछ भी करें ना, दे आर प्रोटेक्टर्स फॉर अस, सो वो प्रोटेक्ट करेंगे तो उनके साथ हमारा रिश्ता बहुत मजबूत रखना जरूरी है। और बच्चों ये भी याद रखो, आपके मेंटर्स आपके टीचर्स है, एवरीबडी इज वर्किंग फॉर यू फॉर योर बेनिफिट, सो ये रिसोर्सेस को आप सही यूटिलाइज करो, आपका गोल सेटिंग करो, एंड एनी टाइम यू हैव अ प्रॉब्लम डोंट कीप इट विद इन योर सेल्फ एंड डोंट टॉक टू रॉन्ग पीपल इन सोशल मीडिया। मोस्ट ऑफ द टाइम रियल कनेक्शंस छोड़ के हम किसी एक्स वाई जेड को हमारा प्रॉब्लम बताते हैं, वो कौन भी हमें पता नहीं, क्योंकि उधर से वो परपेट्रेटर है, बहुत सारा साइबर क्राइम्स ऑन चिल्ड्रन यही हो रहा है, क्योंकि हम ऐसा जिनको हम देखते भी नहीं उनको हमारा पर्सनल प्रॉब्लम्स हम बताते हैं. सो डोंट डू दैट. स्टे कनेक्टेड विद द रियल लाइफ पीपल एंड देन टॉक टू देम, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, कुछ भी है टॉक टू योर मेंटर्स.

0: बिकॉज द प्लेटफॉर्म्स आर ओपन फॉर यू, वी ऑल आर वर्किंग फॉर यू, वी आर ट्राइंग टू चेंज. सिस्टमिक लेवल में हम चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं. बच्चे आप भी, यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, सो यू यूटिलाइज, यू बिकम यू नो मेंटर्स फॉर अदर पीपल. सो दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू एंड द मैसेज विथ यू, सो यूटिलाइज योर हाइएस्ट पोटेंशियल एंड देन यू नो रीच योर गोल्स.
1: जी, नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए एक गंभीर चुनौती है, लेकिन सही मार्गदर्शन, दृढ़ इच्छा शक्ति और परिवार के सहयोग से इस समस्या पर विजय प्राप्त की जा सकती है. आप दोनों ही अपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर आकाशवाणी हैदराबाद को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद सीमा जी.
2: थैंक यू मैम.
3: श्रोताओं, आप सुन रहे थे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के अवसर पर प्रस्तुत एक विशेष हिंदी चर्चा. इस चर्चा में देविका जी ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, उसके कारणों और पुनर्वास केंद्र की भूमिका पर महत्वपूर्ण जानकारी दी. साथ ही एक पुनर्वासित व्यक्ति ने अपने जीवन के वास्तविक अनुभव साझा करते हुए यह बताया कि नशा से मुक्ति संभव है. इस चर्चा को प्रस्तुत कर रही थी सीमा कुमारी. आइए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम सब मिलकर एक संकल्प ले, नशे से दूर रहेंगे, अपने मित्रों और परिवार को जागरूक करेंगे. इसी संदेश के साथ आज का ये विशेष हिंदी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है. फिर मुलाकात होगी इसी तरंग पर. तब तक के लिए जयदीप को दीजिए अनुमति, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद. नमस्कार.

0: सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. UP police has arrested 8 people named in the first FIR filed in the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the Special Investigation Team, SIT, constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case was registered at the Sri Ram Janmabhoomi Police Station on the written complaint of Trust member Krishna Mohan. The FIR names Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lavkush Mishra, Manish Kumar Yadav, Karunesh Pandey, Ramashankar Mishra, Subhash Srivastava, and Sri Ram Shankar Yadav alias Tinnu, along with other unidentified accused. The SIT, headed by Lucknow Divisional Commissioner Vijay Vishwas Pant, submitted its preliminary report to the government on Tuesday, making strict recommendations in the matter. Following this, the FIR was registered yesterday. The case came to light after allegations of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust emerged. India, along with 34 nations, has signed a US-led initiative to build trusted and resilient supply chains to power artificial intelligence AI technologies at the second PAX Silica Summit in Washington yesterday. US Undersecretary of

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में

0: एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोबाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये, मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट

0: सेंट एल्बान मेहीपुरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
0: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Happy birthday to you, Stephen!
4: Thank you. How are you? Happy birthday, Stephen!
5: Thank you,
4: congratulations!
5: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, yes. Martin. How are you?
2: Oh, fine.
5: Thanks for coming in. Please come in. Please.
3: Oh, sure. Yes. Why not?
2: Come. Hey.
3: Come.
2: John, please come here.
3: Oh, sure. Hey.
5: Join us for a drink.
1: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
3: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,

0: Javi, Gina, Chato, dos alei, mi salvine, pure, pachas, sa, archiunca.
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
2: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ১৯৮৫ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।

0: प्रोफेसर डेनिस
1: जी,
0: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है? आपने इसका विकास कैसे किया?
1: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
0: ओह।
1: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
0: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
1: जी।
0: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
1: तो लीजिए, सुनिए।
2: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
3: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
4: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
3: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
4: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
3: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
4: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
3: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
4: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
8: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
3: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे।

0: दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
1: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
3: चलो बच्चों, आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
4: हाँ।
3: गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
5: आग का गोला?
3: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे, मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
4: सूरज।
3: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो,
6: बहुत आसान पूछते हो।
3: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
6: अगली बार में बहुत मुश्किल।
3: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
4: हाँ।
3: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
6: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
3: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
7: वो तारा होता है।
3: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
8: वो रात और दिन भी बनाता है।
3: एकदम सही एकदम सही।
7: वो हमें धूप भी देता है।
3: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
6: धूप से हाँ। ना अच्छी बात भी होती है।
3: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
6: विटामिन डी।
3: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है, अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे।
7: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता। सुबह को रोशनी आती फिर।
3: हाँ हाँ बिल्कुल।
6: पेड़ों को खाना भी देता है।
3: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा, इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
6: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
3: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
6: हाँ।
8: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
3: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
6: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
3: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
6: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
7: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
3: ना।
7: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
3: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चो सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
6: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
3: बहुत बड़ा होता है
7: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
3: हम क्योंकि कई

हुए दवाओं की सप्लाई चेन में बेहतरी लाना है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जिनके नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ के क्षेत्र अतिया केस में दायर की गई पहली FIR में दर्ज किए गए हैं। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर कायम की गई खसूसी जांच टीम SIT की सिफारिश पर यह FIR दर्ज की गई है। ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन की तहरीरी शिकायत पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज किया गया था। लखनऊ के डिवीजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की सरबराही वाली SIT ने मंगल के रोज सरकार को अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की है। ट्रस्ट ने खसूसी तहकीकात की दरखास्त की थी जिसके बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने SIT की तश्कील का हुक्म दिया। भारत ने एक भरोसेमंद और मुस्तहकम सप्लाई चेन बनाने के लिए अमेरिका की कायद वाली तहरीक के लिए एक दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं जिसका मकसद मसनूई जहानत AI पर मबनी टेक्नोलॉजीज को मजीद ताकतवर बनाना है। यह दस्तखत कल वाशिंगटन में दूसरी पैक सिलिका समिट के दौरान 34 मुल्कों के साथ किए गए हैं। इक्तसादी उमूर से वाबस्ता अमरीका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैकोब हेलबर्ग ने बताया कि अमरीका भारत के साथ अपनी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाहिशमंद है। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को 21वीं सदी का एक सबसे नतीजा खेज मुआहदा बताते हुए उन्होंने कहा कि क्वाड और ट्रस्ट पहल समेत कई फोरमों में भारत और अमरीका के दरमियान कलीदी शोबे में तबादले ख्याल किया गया है। भारत की तरफ से समिट में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के सेक्रेटरी एस कृष्णन और भारतीय सनत के नुमाइंदों ने शिरकत की। भारतीय वफ्द ने सेमीकंडक्टर्स, मसनूई जहानत और मजबूत टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में इश्तराक को आगे बढ़ाने से मुतालिक सनती रहनुमाओं के साथ मुजाकरात भी किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतवार को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क आवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इस महाना रेडियो प्रोग्राम का ये 135वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज AIR मोबाइल ऐप से नशर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO, इतलातु नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों से भी नशर किया जाएगा। आकाशवाणी इस प्रोग्रामों को इसके हिंदी नशरिये के फौरन बाद इलाकाई जबानों में भी नशर करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने उन्हें रोशनी बिखेरने वाली एक ऐसी अदबी कदावर शख्सियत करार दिया है जिनकी तहरीरों से भारत की कई नस्लों को वतन परस्ती का जज्बा और सकाफती फख्र हासिल होता है। इस साल की अहमियत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह मना रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत की तहरीकी आजादी के लिए मुल्क को वंदे मातरम का अतिया किया जो सबसे ज्यादा जिंदा व पाइंदा रहने वाला तहरीक का एक जरिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज को उनकी सालगिरह पर खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनी जिंदगी में महरूम पसमानदा तबकों और इस्तेशाल शुदा लोगों को ऊपर उठाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। वजीर आजम ने कहा कि उनके अजीम नजरियात आने वाले दिनों में कौम की रहनुमाई करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के खवातीन के फोरम 2026 में खवातीन की क्यादत वाले तहरीक के अपने अज्म को दोहराया है। आज एक वर्चुअल तकरीब से खिताब करते हुए खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर अन्नापूर्णा देवी ने जोर देकर कहा कि खवातीन महज तरक्की के फायदे हासिल करने के लिए नहीं है बल्कि वो 2047 तक विकसित भारत की ताकतवर तरीन महारिक भी हैं। भारत में जर्मनी के सफीर फिलिप अकरमान ने कहा है कि भारत काबिले तजदीद तवानाई के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरा है। एक न्यूज एजेंसी के साथ बात करते हुए जनाब अकरमान ने तजारत, सियासत और कलीदी शोबे में जबरदस्त ताउन को उजागर करते हुए भारत और जर्मनी के दरमियान माहौल के लिए साजगार और पायदार तरक्की में शराकतदारी की कामयाबी को उजागर किया। आज आशूरा मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों ने हक व सदाकत और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए मैदान करबला में अपनी जान का जो नजराना पेश किया था उसकी याद में यह दिन मनाया जाता है। इस मौके पर ताजियों के जुलूस निकाले जा रहे हैं, मजालिस का भी एहतमाम किया गया है जिसमें शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मुहर्रम हमें हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद

0: of a new T20 cycle for India, who will be playing its first T20 international since lifting the T20 World Cup. Captain Shreyas Iyer will lead a young squad that includes 15-year-old batting prodigy Vaibhav Suryavanshi. In the FIFA World Cup, Australia has qualified for the knockout stage after playing out a goalless draw against Paraguay in their Group D clash at the San Francisco Bay Area Stadium this morning. In another Group D fixture, Turkey signed off its World Cup campaign on a positive note with a 3-2 victory over the USA at Los Angeles Stadium. In another match, the Netherlands outclassed Tunisia by 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a knockout clash with Morocco. In another Group F fixture, both Japan and Sweden stormed into the round of 32 as they played a 1-1 draw at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champion Brazil in the next round. Ecuador also advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a Group E clash at the New Jersey Stadium early this morning. In men's hockey, India will face arch rivals Pakistan in its penultimate FIH Pro League match at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London this evening. The match is scheduled to begin at 10:20 p.m. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah calls for united fight against drugs, says drug menace poses threat to national security and future of youth. Uttar Pradesh police arrest 8 people in connection with Ram Mandir donation embezzlement case. India, along with 34 nations, signs US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussein on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland in T20 International in Belfast this evening. All eyes on debutant prodigy Vaibhav Suryavanshi. And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath main Lavleen Nigam. गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान. कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा. उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया. भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए. इसका उद्देश्य मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया. टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से. टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें. और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया. अब समाचार विस्तार से. गृहमंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है. उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की. श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की.
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है. आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय. और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए.
1: गृहमंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं. उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा.
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारे

0: प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की।

0: कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
1: For our business,
2: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार हैं।
1: 60,000 स्टूडेंट्स
2: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
3: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी

0: भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 406.5 मीटर्स अर्थात 738 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये हैदराबाद केंद्र है। आकाशवाणी हैदराबाद के इस विशेष हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जयदीप। श्रोताओं, नशा सिर्फ एक व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उसके परिवार, समाज और पूरे राष्ट्र के भविष्य को प्रभावित करता है। हर वर्ष 26 जून को पूरा विश्व इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग यानी नशीली पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन हमें नशामुक्त जीवन का महत्व, जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देता है। आज के समय में युवाओं को नशे के दुरुपयोग से बचाना, उन्हें सही दिशा देना और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रेरित करना हम सब की सांझी जिम्मेदारी है। भारत सरकार द्वारा नशा मुक्ति और मानसिक सहायता के लिए मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 भी उपलब्ध कराया गया है, जहां आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त की जा सकती है। इसी विशेष अवसर पर आज के कार्यक्रम में हम नशीली पदार्थों के दुरुपयोग, अवैध तस्करी के खतरों और उनसे बचाव के उपयोग पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ है NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर श्री PM यशवंत जी, जो इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार और अनुभव हम सबके साथ साझा करेंगे। और उनसे बातचीत प्रस्तुत कर रही है सीमा कुमारी। तो आइए एक जागरूक, सुरक्षित और नशा मुक्त भारत की दिशा में बढ़ते हुए सुनते हैं ये विशेष साक्षात्कार।
2: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैदराबाद के जोनल डायरेक्टर PM यशवंत जी, जो इस गंभीर विषय पर अपने विचार और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। यशवंत जी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
3: मैम नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। बात करेंगे हम जो अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
3: 1987 में इसका शुरुआत है जी, क्योंकि ड्रग्स का प्रॉब्लम ये नहीं कि पिछले 50 इयर्स में या 100 इयर्स में नहीं है, इट वाज देयर सिंस मेनी इयर्स। तो पहले क्या है कि इट यूज्ड टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन गवर्नमेंट और वन पर्टिकुलर रीजियन। तो स्लोली जैसे जैसे वो तो बढ़ते रहते हैं, देन सारे गवर्नमेंट्स ऐसे एक डिसीजन पे ले लिया कि नहीं, इसके खिलाफ हम लोग बहुत स्ट्रांग एक्शन लेना है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल बाय वन रीजन बिकॉज दिस इज स्प्रेड अक्रॉस द रीजन्स, अक्रॉस द कंट्रीज। तो 1961 में भी इसका एक लॉ है, 1971 में भी एक लॉ है, लेकिन सारे गवर्नमेंट्स ने सोचा है कि एक लॉ से ऐसे नहीं है, इसका पूरा एक इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। इस पर अगर कुछ एक्शन लेना है तो, इस पर कुछ वेरी स्ट्रांग एक्शन लेना है तो हम लोग एक इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। तो सारे गवर्नमेंट्स में अंडर द UN के डायरेक्शन पर 1987 में दे हैव फाइनलाइज दिस डेट कि जून 26th विल बी सीन एज एन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो ये 89 से स्टार्ट हुआ, 1980

0: 1989 से एवरी ईयर जून 26 इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग. और क्यों जून 26 का है तो मैम, मेन रीजन ये है कि इसका दो है कारण. एक तो दे हैव फाइनलाइज्ड इन द मंथ ऑफ जून, उस वक्त क्या है कि 87 में जब सारे लोग ये फाइनल करने के लिए कि कुछ डिक्लेरेशन साइन किया, दैट वाज डन इन 87 जून 26 में. लेटर इसका हिस्टोरिकल फैक्ट यह है कि ओपीएम वॉर्स यू माइट हैव हर्ड इन द हिस्टरी बिटवीन चाइना एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इज द एरिस्टवेल ब्रिटिश, सो दोज वॉर्स ऑल्सो केम टू एंड इन 1839 जून. तो बोथ दे वॉन्ट टू सिग्निफिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वन, हेंस जून 26 इज सीन एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग.
1: जी, बहुत अच्छे से आपने ये हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया. जो वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो आपके जोन में जो मादक पदार्थों से संबंधित सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो क्या हैं?
0: मैम, जैसे मैंने बताया, ये हर बार जो इस मतलब द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस वन, ड्रग स्मगलिंग एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, बिकॉज ड्रग्स में भी अलग अलग तरीका के है मैम.
1: जी,
0: ड्रग्स में भी
1: जी,
0: क्योंकि नॉट एवरी ड्रग इज इलीगल. Not every drug is illegal. By definition, आप देखा है तो ड्रग इज ए काइंड ऑफ मेडिसिन. अगर इफ वी आर नॉट इल, अगर हम लोगों को कुछ बुखार ऐसे अगर आए तो हम लोग दवाई लेते हैं. तो हमारे पास एक सेइंग में है, जैसे हमारे एल्डर्स बोलते हैं, इफ यू टेक एनी क्वांटिटी इन एक्सेस इट इज हार्मफुल. तो ड्रग्स का भी वही मैम. तो मेन ये है कि वर्ल्ड वॉर्स में आपने ये सुना है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक रहता है, दैट इज ए काइंड ऑफ पेन किलर. तो जो भी सोल्जर उस वक्त इंज्योर होता रहता है, आजकल जितना एडवांसमेंट्स है जो मेडिकल टेक्नोलॉजी में और सारे दवाइयां और इसमें जो एडवांसमेंट है, उस वक्त नहीं थे. करीब 80-90 ईयर्स बैक थिन यूज टू बी द मेन पेन किलर. एंड तो उसको मेन यूटिलाइजेशन ये है कि जो मतलब जिसको बहुत पेन है उसी को देना है, बट जो मतलब एनी थिंग इफ टेकन इन एक्सेस इट विल कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स. तो वैसे ये स्टार्ट किया मैं, तो पहले ड्रग से ये शुरू हो गया. बट आजकल आज के दिन में क्या है कि बोथ सोर्सिंग भी थोड़ा सा मतलब टेक्निकली एडवांसमेंट हो गया और उसका यूसेज भी टेक्निकली एडवांसमेंट हो गया. अगर आप एलो करें तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा.
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मैम, जैसे मैंने बताया सोर्सिंग का है. पहले क्या है कि जो आप ओपियम पॉपी और इसके बारे में सुना होगा, नॉर्मल फार्मिंग टाइप्स का ये करते रहते हैं मैम, कुछ फील्ड में फार्मिंग करते रहते हैं. और जैसे ये ड्रग्स है वो कुछ केमिकल लेबोरेटरी में या फैक्ट्री में या फार्मा कंपनी में उसका मैन्युफैक्चर होता रहता है. लेकिन आजकल क्या है कि आपको इंटरनेट माध्यम में इतना सा इन्फॉर्मेशन है, आपको एनीवन इवन ए नॉन मेडिकल बैकग्राउंड और ए नॉन साइंस बैकग्राउंड इंडिविजुअल भी ड्रग्स को तैयारी कर सकता है. वो देख रहे चलो ये इसका मतलब क्या क्या चीजें चाहिए इसके लिए, ये ड्रग कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि कुछ ओनली फ्यू सब्सटेंसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड. अगर उसका सेल परचेज आप करना है तो आपके पास कुछ पर्टिकुलर लाइसेंस होना चाहिए और जो बेच रहे उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए. बट कई ऐसे है कि उसके अगर सेल परचेज करने के लिए कुछ लाइसेंस का जरूरत नहीं है, जैसे जाके या मैं और आप भी जाके वो खरीद सकते हैं. तो जैसे ये इंटरनेट में और इंटरनेट माध्यम और बाकी सारे माध्यम में इनको इन्फॉर्मेशन है, उस बेसिस पे देख के घर या कोई फार्म हाउस या कोई वेयर हाउस एनी प्लेस दे आर एबल टू मेक दिस ड्रग्स. ऐसे नहीं कि इसके लिए कुछ आपको पूरा एक फैक्ट्री टाइप का वो इक्विपमेंट चाहिए, वैसे नहीं है. जैसे कुछ स्मॉल स्मॉल इक्विपमेंट में भी आप वो ड्रग्स का तैयारी कर सकते हैं, बस स्केल में थोड़ा कम हो सकता है. मतलब जो फैक्ट्री में मान लीजिए बहुत लार्ज स्केल में हो सकता है, यहाँ स्केल कम है. तो वो एक है. दूसरा क्या है कि अभी ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी है. एक तो है जैसे मैंने बताया ड्रग्स को तैयारी करने का
1: जी.
0: दूसरा क्या है कि जो लोग वो तैयारी कर रहे हैं या इसका यूसेज कर रहे हैं उसको ट्रैकिंग करने, उसको आइडेंटिफाई करने, वो लोग भी क्या है कि अभी इंटरनेट माध्यम और टेलीफोन में जो आगे एडवांसमेंट्स आ गया उसको यूज कर रहे हैं और दे आर लीविंग वेरी लेस फुटप्रिंट्स. कि हो सकता है कि मेरा फोन नंबर आपको हैदराबाद से ही आपको आ सकते हैं, अगर मैं आपको फोन करे तो मैं आपका हैदराबाद नंबर से ही कॉल कर सकता हूँ. ये भी पॉसिबल है मैडम, मैं इंडिया में भी नहीं रह सकता, मैं कहीं और रह के मैं आपको कॉल कर सकता हूँ. वो है, ये भी है पॉसिबिलिटीज. तो उसका ट्रैकिंग करना है, इट इज नॉट दैट इट इज नेक्स्ट टू लाइक इम्पॉसिबल, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टेक्स टाइम. बट द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हॉनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर एंड द हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना हैव फुल्ली रिजॉल्व्ड to ensure a drug free India and a drug free Telangana. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का एक ही ये है मैम कि नशा मुक्त भारत.
1: बिल्कुल,
0: नशा मुक्त भारत के लिए पूरे पावर्स दिया कि आप सही डायरेक्शन पे जाइए, जो भी ये रॉन्ग डायरेक्शन में और ये रॉन्ग ड्रग्स इस पे इन्वॉल्व है उसको तो प्लीज एंश्योर ए वेरी स्ट्रांग हैंड. दिस इज द डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड इक्वली गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना.
1: जी, और ये बहुत ही बड़ा कदम है. अगर सरकार जो है वो राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है तो एक नशा मुक्त भारत जो है वो कहीं दूर नहीं है, हम उसे पा सकते हैं. अब हम बात करेंगे युवाओं की, क्योंकि देखिए डिजिटलाइजेशन का जमाना है, डिजिटल इंडिया है, और यहाँ पे

0: टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सबसे ज्यादा युवा जो हैं ये इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ये जो बढ़ती नशे की प्रवृत्ति है उसको आप किस प्रकार देखते हैं?
1: मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ।
0: जी
1: जैसे आपने ही बोला है कि हमारे देश का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ युवाओं में, यूथ,
0: बिल्कुल
1: हमारा यूथ है,
0: जी
1: क्योंकि सारे आप दुनिया में जितने भी देशों हैं आपने
0: बिल्कुल
1: देख लिया, आवर मेन स्ट्रेंथ इज द यूथ। तो हम इस पे मेन क्या है कि दो तरीके से है। एक तो जो आपने बोला कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डिजिटल ये है, तो कुछ चीजें कि कंट्रोल पे नहीं है मैडम। पहले क्या है कि जो भी आप इंटरनेट में, क्या है कि ये आगे किसको भेज रहे हैं आप किससे कांटेक्ट में है, ये ट्रैकिंग थोड़ा मुश्किल है। तो क्या है कि आजकल ये सारे जो भी सोशल मीडिया का अकाउंट्स है और जो इंटरनेट माध्यम से आप कुछ चीजें देख सकते हैं और खरीद सकते हैं, मेन यूथ उस पर अट्रैक्ट हो रहा है। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि क्यों यूथ उस चीज पे अट्रैक्ट हो रहा है। एक तो फॉर एनीथिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसका कुछ होना चाहिए। अगर कुछ खरीदने के लिए मैं जा रहा हूं, अगर वो मार्केट में अगर है तो ही मैं खरीद सकता हूं। ऐसे नहीं कि मेरे को खरीदने का मन है लेकिन मार्केट में नहीं है तो मैं नहीं खरीद सकता हूं। तो अगर यूथ इस पे चल रहे तो मार्केट में मिल रहे हैं ये चीजें, एंड
0: बिल्कुल
1: दिस इज नॉट रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड है। और क्यों ये यूथ इसके मेन मतलब टारगेट कर रहे हैं, ये कि ऐसे नहीं कि यूथ उसको कुछ ये करने के, मतलब इसको दो तरीका है। एक तो बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, जैसे पीयर प्रेशर है, अगर मतलब
0: बिल्कुल
1: अगर
0: अपने
1: एक
0: आप को कूल दिखाना है।
1: जी अगर कुछ
0: जी
1: एक ग्रुप में 5 लोग हैं मैडम, 4 लोग अगर कर रहे तो, अगर पांचवा व्यक्ति अगर वो शांत बैठे तो भी उसको लगता है अरे मैं वो लोग कर रहे हैं मैं भी करना है, या वो लोग फोर्स करते हैं आप भी करो कुछ नहीं होगा, देखो हम सब कर रहे हैं हमको कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ आप भी करो, ऐसे वो एक पीयर प्रेशर रहता है।
0: बिल्कुल
1: दूसरा ये है कि उनको भी एक ये रहता है कि चलो इतने लोग कर रहे हैं मैं क्यों नहीं ट्राई करूं। ऐसे नहीं कि किसी बोलने से वो नहीं कर रहे,
0: हाँ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स
1: अपने
0: इट।
1: आप को अपने
0: जी
1: आप को वो अट्रैक्ट हो जाता है कि क्योंकि जो भी आप मूवीज में देखते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं वो उसको थोड़ा ग्लोरीफाई करते हैं,
0: बिल्कुल
1: आप उसको ग्लोरीफाई करते हैं कि चलो आप
0: जी
1: ऐसे यूज करें तो आप ऐसे
0: ये
1: रहते हैं।
0: ठीक है, मतलब यू कैन डू इट, हीरो कर रहे हैं तो हम भी
1: एग्जैक्टली
0: कर
1: एक
0: सकते हैं। जी
1: उसको क्या बोलते हैं कि जनरलाइज कर लेते हैं,
0: बिल्कुल
1: ये जनरलाइज कर
0: बिल्कुल
1: देते हैं कि ठीक है चलो ये कर सकते हैं आप, कुछ नहीं रहता है। बट बहुत ही कम माध्यम में उसका हार्मफुल इफेक्ट्स या उसका रियल इफेक्ट्स आपको शोकेस करते हैं कि अगर आप ये लिया तो आपका जिंदगी ऐसे हो सकता है। देर आर वेरी फ्यू थिंग्स एंड इट इज वन ऑफ द मेन रीजन वाई मेनी इवन एडुकेटेड पीपल आर इग्नोरेंट ऑफ द आउटकम्स ऑफ बींग इन्वॉल्व इन ड्रग अब्यूज।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मेरे ख्याल से जो भी श्रोता हमारे जो ये सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि नशा करना जो है वो किसी भी पीयर प्रेशर में, किसी भी सोशल प्रेशर में, या अपने आप को अच्छा या कूल दिखाने के लिए, मतलब एक छोटे क्राइम से बचने के लिए बड़ा क्राइम करने की जरूरत नहीं है। यू कैन लीव इट एंड इट्स टोटली ओके। अब हम बात करेंगे जो एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
1: हमारे देश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी
0: जी
1: एनसीबी
0: जी
1: इज द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर टू टेक फुल एक्शन अगेंस्ट द ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग में। तो हमारे क्या है कि जैसे मैंने बताया मैं हैदराबाद क्षेत्रीय से आ गया, मैं आई एम फ्रॉम हैदराबाद जोन। हर एक स्टेट में एनसीबी का जोन है, तो पूरा हम लोग क्या है कि देख लेते हैं कि और एनसीबी इंडिविजुअली एंड इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस, बाकी सेंट्रल एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन से मिलके कि ये ड्रग ट्रैफिकर्स का और ड्रग एब्यूज करने वाले पर पूरा ये फोकस करते हैं। एक तो विद इन इंडिया, दूसरा क्या है कि करीब 25 to 30 कंट्रीज से हम लोगों को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और बायलेटरल एग्रीमेंट्स है, यानी मतलब अगर मान लीजिए इंडिया और एनी अनदर एक्सटर्नल कंट्री से इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और उसका बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, और अगर कुछ ऐसे लगता है कि सो एंड सो पर्सन इज इन्वॉल्व इन सो ट्रेड और वो ऐसे कर रहे हैं, अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है तो दीजिए। तो इट इज बोथ इंटेलिजेंस एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इज फुल्ली इन्वॉल्व इन फोकसिंग इन टू द ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग।
0: जी अच्छा, मान लीजिए कोई जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, अगर उसे कुछ ऐसा पता चलता है कि इलिसिट ट्रैफिकिंग हो रही है या फिर ड्रग अब्यूजेज और यूजेज बढ़ रहे हैं, तो वो एनसीबी से कैसे संपर्क कर सकता है।
1: हमारा एनसीबी का ऑफिस एक तो है हर
0: जी
1: एक स्टेट कैपिटल में है,
0: जी
1: जिसका सारे डिटेल्स इन द पब्लिक डोमेन में है। हम लोग प्रेस में भी ऐड देते रहते हैं और इंटरनेट माध्यम में भी ये रहते हैं, क्योंकि हमारा एनसीबी का वेबसाइट भी है
0: जी
1: जिसपे हर एक का फोन नंबर और हर एक का ऑफिस का एड्रेस ये सारे है। इसके अलावा मानस हेल्पलाइन करके एक चीज है
0: जी
1: जिसका नंबर है मैम 1933।
0: मैं चाहूंगी कि आप इसे फिर से दोहराएं ताकि हमारे श्रोता नोट
1: जी
0: कर
1: मैम,
0: सकें।
1: जी मैम, एनसीबी का मानस हेल्पलाइन 1933, इट इज अ टोल फ्री नंबर। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी सिटीजन इस पे कॉल करके उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है कि कुछ ड्रग अब्यूज और

0: ट्रैफिकिंग का ये हो रहा है तो वो शेयर कर सकते हैं। और उसमें सबसे खास बात यह है कि जो भी उस पे फोन करते हैं कि ऑल देयर फोन नंबर डिटेल्स नेम आर एनश्योर टोटली कॉन्फिडेंशियल,
1: जी
0: वो तो किसी के साथ किसी वक्त शेयर नहीं करते,
1: जी
0: इट इज कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल। और जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं उसको वो डरने की ये जरूरत नहीं कि अगर मैंने
1: हाँ
0: इन्फॉर्मेशन शेयर करे तो
1: जी
0: मेरा नाम और नंबर बाहर आ जाएगा, वो मेरे
1: बिल्कुल,
0: को टारगेट कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं रहता, इट इज टोटली कॉन्फिडेंशियल।
1: यानी कॉन्फिडेंशियल और एनोनिमस भी रहता है, तो इसमें हाँ चिंता करने की
0: और
1: जरूरत नहीं
0: इतना
1: है।
0: कॉन्फिडेंशियलिटी हम लोग इंश्योर करते हैं कि जैसे वो हम लोग, मैंने बताया जैसे मानस हेल्पलाइन 1933 है, वो हमारे हेडक्वार्टर्स पे जाते हैं विच इज बेस्ड इन दिल्ली, वहां से हर एक रीजनल यूनिट को जाते हैं इन्फॉर्मेशन,
1: जी
0: जैसे हेडक्वार्टर्स को जाते हैं इवन हेडक्वार्टर्स से भी हम लोगों को कौन कॉल किया उसका इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, मतलब इतना
1: इतना
0: कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर
1: कॉन्फिडेंशियल
0: करते
1: है
0: हैं,
1: जी
0: मतलब जितना इन्फॉर्मेशन शेयर करना है उतना ही है।
1: बस। यानी बड़े लेवल पे ही ये तय किया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी जानकारी जो है वो उजागर ना की जाए। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन जो माध्यम है या फिर सोशल मीडिया है उसके जरिए जो नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है, तो इससे निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है?
0: ऑनलाइन में भी आजकल ये सारे ड्रग्स का परचेज और सेल और वो बहुत हो रहे हैं,
1: जी
0: स्पेशली आपने सुना ही होगा डार्क वेब करके, उस पर बहुत ही ये रहते हैं, उस पर केवल इंडिया के नहीं है, पूरा मतलब दुनिया से उसका वो रहता है मेन, उस पर भी हम लोग पूरा एक्शन ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकली उसको क्रैक करने का, मतलब दोनों ह्यूमन और टेक्निकल टूल्स है अपने पास,
1: जी
0: तो वैसे भी हमने बहुत सारे केसेस बुक किया पहले, क्योंकि जो भी पोस्टल माध्यम से और इसको पोस्टल और वेरियस कुरियर माध्यम से जो ड्रग्स आए फॉरेन से और वो जिसका ऑनलाइन मतलब परचेज और सेल जो डार्क वेब से हुआ, हमने उसको क्रैक किया और वो ड्रग्स को पकड़ा, और जो भी इंडिया में उसको ड्रग्स को ले रहे उसको हमने अरेस्ट भी किया, और जो भी फॉरेन से भेज रहे हैं वो जो जिस कंट्री से है उस कंट्री को हमने इन्फॉर्मेशन भी दिया, तो वो जो ये इंटरनेट का जो माध्यम है ना, पूरा आईपी एड्रेस का ट्रैकिंग करते, कहाँ से ये हो रहे हैं, वो उसका लाइव लोकेशन, ये सारे ट्रैकिंग हम कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब ट्रैकिंग हो जाती है तो उसे मतलब पकड़ना या फिर उस तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। अब हम बात करेंगे जो नशीले पदार्थों के सेवन और तस्करी से जुड़े मामले हैं, तो उसका कानून में क्या प्रावधान है?
0: ये ड्रग एब्यूज और ये जो इलिसिट ट्रैफिकिंग का
1: जी
0: है, इसका मेन जो एक्शन ले लेते हैं वो एनडीपीएस एक्ट से होता है,
1: जी
0: नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1987। इस एक्ट में अलग अलग ड्रग्स के लिए क्या क्या इसका पनिशमेंट दे सकता है, वो करीब 1 साल से 10 साल तक और 20,000 से 1 लाख का फाइन। और सबसे अहम बात यह है कि लाइक आपको शायद बाकी जो लॉस है उस पर एक्शन देगी, और इस पे आजकल जो ड्रग्स के ये जो इलिसिट ट्रैफिकिंग और ड्रग्स के बिजनेस पे है, वी आर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू अरेस्ट द पर्सन, वी आर गोइंग वन स्टेप बिहाइंड, और ये जो ड्रग्स के बिजनेस से, ये जो इलीगल ड्रग बिजनेस से वॉट एवर प्रॉफिट्स हैव बीन अर्न और उसको कहाँ इन्वेस्ट किया, उस प्रॉपर्टीज को भी हम सीज कर रहे हैं,
1: ये बहुत अच्छी बात है
0: उसको भी
1: जी,
0: सीज कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि चलिए हम ड्रग्स को पकड़ लिया और जो इंडिविजुअल्स है उसको भी पकड़ लिया हमने, वहां तक हमारा केस खत्म नहीं होता है,
1: जी
0: ये भी देखते हैं कि चलिए इस ड्रग्स से, इस ड्रग्स का जो ये इलीगल बिजनेस से अगर कुछ प्रॉफिट उसको हुआ और
1: असेट्स
0: मतलब
1: जो
0: उसको
1: उन्होंने
0: मिला
1: किया
0: और
1: जी
0: उस प्रॉफिट से जो भी एसेट्स वो ने खरीद लिया उसको भी हम फ्रीज कर लेते हैं और पूरा जब्त कर देते उसको।
1: जी जो कि एक बहुत बड़ा डिस्करेजमेंट का कदम
0: जी
1: है और लोग इसकी तरफ अग्रसर नहीं होंगे। जब हम बात करते हैं कि एनसीबी जो है वो इस क्षेत्र में कार्य करता है, लेकिन एनसीबी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ किस प्रकार समन्वय स्थापित करता है, और वो कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो आपके साथ मिलकर काम करती हैं इस दिशा में?
0: मैडम, जैसे मैंने बताया हमारा एनसीबी का हेडक्वार्टर्स इज बेस्ड इन दिल्ली,
1: जी
0: तो हम लोग जो एनसीबी कम्स अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स,
1: जी
0: तो हर एक लेवल पर हेडक्वार्टर लेवल से मिलकर इवन अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द स्टेट, हेडक्वार्टर लेवल, जोन लेवल, स्टेट लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर महीने मीटिंग्स होता रहता है इस पर
1: जी
0: अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे एनसीबी से मैं, स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट फ्रॉम स्टेट पुलिस और आईबी से भी लोग आते हैं और स्टेट एक्साइज से भी आता है, ड्रग कंट्रोल एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो इस्तेमाल करते हैं उनका भी ऑफिसर्स आता रहता है। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके डेटा को एक्सचेंज करते हैं कि देखिए हमारे पास ये है, हमने पिछले महीने इस केस बुक किया, हमको इस केस में ये पॉइंट्स मिल गया, तो इसका हमको लगता है कि आप भी इस पर फोकस कर सकते हैं, यू ऑल्सो हैज टू फोकस ऑन दिस केस आपके एक्ट के हिसाब से, ये होता रहता है, तो हर महीने हम लोग ये मीटिंग में डेटा एक्सचेंज रहता है और बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करते रहते हैं, जैसे ये दिस इज एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल भी ऐसे होते हैं, जोन लेवल भी ऐसे होते हैं और नेशनल लेवल भी होता रहते हैं।

0: और जैसे अभी आगे जून 26 है, जिस दिन हमने इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड
1: जी
0: इलिसिट ट्रैफिकिंग
1: बिल्कुल.
0: करते हैं, उस दिन हॉनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर विल बी चेयरिंग द एपेक्स लेवल एनक्वाड मीटिंग इन दिल्ली, वेयर द हॉनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर चेयर्स अ मीटिंग अलॉन्ग विद द अदर एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स हेड ऑफ ऑल द स्टेट्स
1: जी
0: अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द एनसीबी हेडक्वार्टर्स।
1: जी और कि बहुत बड़ा कदम होगा नशा मुक्त भारत के लिए. अब हम बात जब कर ही रहे हैं नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की, तो इसमें समाज और प्रशासन जो है वो मिलकर क्या प्रयास कर सकता है कि ये कदम जो है वो आपका आसान हो जाए.
0: ड्रग्स ऐसे चीज है जो
1: जी
0: कोई उस पर नहीं जाने का है जी, तो उसके लिए जो भी इंडिविजुअल है, बी इट एट एनी लेवल, अगर हो सकता है ही इज ए स्टूडेंट, ही
1: जी
0: इज एन एम्प्लॉयर, एनी वन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, दे हैव टू कम फॉरवर्ड इन इन सपोर्टिंग आवर फाइट अगेंस्ट द ड्रग्स। जैसे एक तो मैंने बताया कि टोल फ्री नंबर पहले मैंने दिया कि 1933 है, अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन है ड्रग्स क्या है तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग, क्योंकि ड्रग्स को अगर टैकल करने के लिए तो एक तो है प्रिवेंशन, हम लोग उसको एक्शन ले लेते हैं अगर कहीं हमको इंफॉर्मेशन है, या हमारा सेल्फ हम लोग ही इंटेलिजेंस डेवलप करके केस बुक किया जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है उसको पकड़ सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम द प्रिवेंशन साइड। दूसरा है कि पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करने, कि पब्लिक को ऐसे चीजें बोलने कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि क्या है इस पे, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑल दिस। इसके लिए हम लोग बहुत सारे एनजीओ से है, स्कूल से, वेरियस कॉलेजेस, वेरियस इंस्टीट्यूशन, इनको हम लोग रेगुलरली अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट कर लेते हैं इन सपोर्ट विद देम, इन
1: जी
0: सपोर्ट विद देम कि ये है, अगर आप ड्रग्स में इन्वॉल्व हुआ तो आपको ऐसे ही हो सकता है, यू विल बी पनिश्ड लाइक दिस, योर लाइफ विल टेक ए कम्प्लीटली डिफरेंट टर्न, ये सारे उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं।
1: जी
0: और जैसे मैंने बताया, ये स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, ऑफिसेस, सब लोग सामने आके एक दूसरे को मतलब ये बोल रहे हैं कि इट इज बेटर ऑलवेज टू गो इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि हमारा एनसीबी का एक मोटो है,
1: जी
0: ये बोलते हैं कि से नो टू ड्रग्स एंड से यस टू लाइफ।
1: जी बहुत अच्छी बात बताई आपने. अब हम बात करेंगे, मान लीजिए किसी व्यक्ति को नशे की लत लग ही जाए, तो उसके जो पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन और उसके उपचार के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं?
0: मैडम, जैसे हम लोग पहले डिस्कस किया कि कई बार ड्रग्स को मतलब ऐसे लेते हैं कि अननोइंगली वो लेते हैं, ऐसे
1: जी
0: नहीं कि नोइंगली, तो कुछ लोग कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो अननोइंगली किया और उसको ये भी हुआ कि चलिए मैं रॉन्ग डायरेक्शन पे गया, मैं अभी इससे पूरा छोड़कर मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहता हूँ,
1: जी
0: उसके लिए डी एडिक्शन सेंटर्स है, उसके लिए डी एडिक्शन सेंटर्स है, वेरियस रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, वेयर वी आर गोइंग ऑन ए रेगुलर बेसिस एंड
1: जी
0: इंटरेक्टिंग विद देम,
1: जी
0: कि उसको कैसे लग रहा है कि ये डी एडिक्शन सेंटर्स में, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, कि वेदर आर दे एबल टू एक्चुअली रिहैबिलिटेट, और कैसे वहां पे जो भी फैसिलिटीज है और उसका जो भी प्रोग्राम है उसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं और उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। वी आर डूइंग दिस ऑन ए रेगुलर बेसिस।
1: जी आप हमारे जो माता पिता हैं, खासकर युवाओं के जो माता पिता हैं, उनको नशे से दूर रहकर स्वस्थ और सफल जीवन कैसे जिए, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा एडवांसमेंट हो गया है जी,
1: जी बिल्कुल
0: क्योंकि मैं स्कूल जाते वक्त तो मैं तो फोन नहीं देखा, सेलफोन कैसे रहता है क्या है करके,
1: जी
0: लेकिन आजकल देखे तो जो स्कूल के जा रहे बच्चे उनके हाथ में फोन है। ठीक है, फोन से ऐसे नहीं कि जो भी फोन पकड़ रहे हैं वो तो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट आजकल क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये है थोड़ा सा अपने अपना लाइफस्टाइल के, अपने अपना जॉब के हिसाब से थोड़ा कि वो तो चिल्ड्रन से जो टाइम स्पेंड करता है वो थोड़ा कम हो गया,
1: बिल्कुल
0: तो मतलब जो बच्चे क्या कर रहे हैं असल में, अगर ठीक है वो अगर कुछ उसके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसका वेरीफाई करने का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। और मैं ये भी बोलता हूं आपको, मेनी पीपल हु हैवंट इवन हैव एनी अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्सेप्ट देयर ईमेल, मेनी पीपल मीन्स मेनी पेरेंट्स हु आर मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज, हु डजेंट हैव एनी सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेप्ट एन ईमेल, आर नाउ हैविंग ऑल द सोशल मीडिया अकाउंट्स। इसका रीजन एक ही है मैडम, कुछ नहीं है, दे वॉन्ट टू मॉनिटर देयर चिल्ड्रन अकाउंट्स। ठीक है, मतलब क्योंकि एक सोशल मीडिया अकाउंट रहने, देर इज नो रॉन्ग इन दैट, देर इज नो रॉन्ग, इट इज गुड दैट दे विल बी नोइंग न्यू थिंग्स, दे विल डेवलप, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसको हाउ टू यूज एंड टिल वॉट एक्सटेंट टू बी यूज, दैट हैज टू बी मॉनिटर्ड।
1: जी
0: इफ इट इज यूज इन द राइट वे, स्काई इज द लिमिट, यू कैन रीच एनी हाइट, बट इफ यू यूज इन द रॉन्ग वे देन इट इज डिफिकल्ट टू गो बैक अगेन।
1: जी
0: तो सारे पेरेंट्स यही है कि उसका मतलब जो भी है, प्लीज स्पेंड मोर टाइम विद देयर किड्स एंड सी मॉनिटर द एक्टिविटीज व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज वन थिंग मैडम, जो हम लोग जो जैसे मैंने बताया कि ड्रग एडिक्ट्स और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पे हम लोग गए तो मेनी केसेस आर दोज वेयर दे आर फीलिंग लोनलीनेस,
1: ट्रू सर
0: इन मेनी केसेस, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट इन मेनी केसेस हु आर फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स ऑफ अवर सोसाइटी, बट वन कॉमन

0: feature what we can see is loneliness, be it for various reasons.
1: जी.
0: That made them force into this one.
1: जी, बिल्कुल सही बात बताई आपने. अब चलते चलते इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे युवा हों या फिर माता पिता.
0: इसे हमारा हॉनरेबल यूनियन प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, यूनियन चीफ मिनिस्टर एंड ऑल द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एक ही हमारा यह है मोटो कि नशा मुक्त भारत, उसका हम फुल्ली उसको इम्प्लीमेंट करने का है. और जो हमारा मोटो है, से नो टू ड्रग्स और से यस टू लाइफ, दैट हैज टू बी द ओनली थिंग. बिकॉज वापस आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार आप ड्रग्स के साइड जाने के बाद इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट यस इट्स ऑलवेज देयर इज अ पॉसिबिलिटी. But it is better to not to go in that direction.
1: जी.
0: Be of various reasons, be of peer pressure or to try new things or for various things, it is better not to go in the direction. Maintain a healthy lifestyle and I just appeal to all my fellow citizens of the country that each one of us has to create awareness among ourselves and among our family, among our neighbors, to tell what are the harmful effects of the drugs, to stay away from that side and to maintain a healthy lifestyle and a healthy life, because a healthy life will automatically lead to a healthy nation.
1: जी.
0: Which our honorable prime minister every day says, every day.
1: स्वस्थ भारत, सशक्त भारत.
0: जी.
1: जी, पीएम यशवंत जी, जनरल डायरेक्टर एनसीबी हैदराबाद, आपने नशे के दुष्प्रभावों, उससे जुड़े कानूनी पहलुओं तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसने स्वतः ही हमारे श्रोताओं को काफी प्रेरित भी किया होगा और अवेयर भी किया होगा. आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर आकाशवाणी हैदराबाद को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: नमस्कार.
1: प्रिय श्रोताओं, आइए हम सभी संकल्प लें कि स्वयं नशे से दूर रहेंगे और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे. स्वस्थ युवा ही सशक्त राष्ट्र की पहचान है और विकसित भारत की भी पहचान बनेगी.
2: श्रोताओं, ये था आज का विशेष हिंदी कार्यक्रम जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग को समर्पित था. आपने सुना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर श्री पी एम यशवंत जी के साथ एक विशेष चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रही थी सीमा कुमारी. मित्रों, नशा व्यक्ति की सोच, स्वास्थ्य और जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए आवश्यक है कि हम स्वयं जागरूक बने, अपने परिवार और समाज को जागरूक करें और नशा मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दे. याद रखिए, नशा समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि नई समस्या का आरंभ है. यदि आप या आपके कोई परिचित नशे से जुड़ी किसी समस्या का सामना कर रहे हो तो भारत सरकार की मानस हेल्पलाइन नंबर 1933-1933 पर संपर्क कर सकते हैं, जहां सहायता उपलब्ध है. इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आइए हम सब एक संकल्प ले, नशा से दूर रहेंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे, सुरक्षित और सशक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे. इसी संदेश के साथ आज का यह विशेष हिंदी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है. फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए विचारों के साथ और नए उत्साह के साथ इसी तरंग पर. तब तक के लिए जयदीप को दीजिए अनुमति, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद.
3: Are you constantly sneezing, have a blocked nose or are suffering from allergy problems? Let's hear expert advice from city's renowned doctor.
4: I am Dr. Mallikarjun, the consultant physician. Chala mandi allergy ni chinna samasya ga bhavistaru, kani rojuvari jeevitham pai gananiya prabhavam chuputundi. Mukku block avatamu, niddarlo sariga undakapovatam, talanoppi, pani ledha chaduvu pai dushti sadhinchalekapovatam, kontamandiki swasa sariga అందకపోవటం. ఈ సమస్య తరచుగా ఉంటే డాక్టర్ గారిని సంప్రదించండి.
3: Issued in public interest by Dr. Reddy's Laboratories. This information is not a substitute for medical advice. Please consult your doctor. While prepared with care, Dr. Reddy's assumes no liability for its content.
5: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ల ఫామ్ ని పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగిచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.

हैदराबाद के रविंद्रा भारती में रियासती हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए मुफ्त हादिसाती बीमा फराहम करने के मकसद से मुख्तलिफ बैंकों के साथ मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस फैसले का मकसद मुलाजमीन के ख़ानदानों को बगैर किसी प्रीमियम के माली तहफ़ फराहम करना है। उन्होंने कहा कि सिंगरेनी के कारकुनों के लिए 1 करोड़ के बीमा मनसूबे की कामयाबी के बाद अब यही सहूलत सरकारी मुलाजमीन को भी फराहम की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने संजय जाजू को रियासत का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद संजय जाजू ओहदा संभालेंगे। 1992 ब्याच के IAS अफसर संजय जाजू इससे कबल मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के सब कलेक्टर, मगरबी गोदावरी के कलेक्टर, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर के अलावा महकमे शहरी सिविल सप्लाईज़ के कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं और वो 2014 से मरकजी सर्विस में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तेलुगु रियासतों में आज मुहर्रम के मौके पर यौम आशुरा मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में अजादारों ने मुहर्रम के जुलूस में शिरकत की। हैदराबाद के पुराने शहर में मुहर्रम के मातमी जुलूस का आगाज़ हो गया है। तारीखी बीबी का आलम का जुलूस दबीरपुरा से शुरू हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में शिया मुसलमानों ने शिरकत की। अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए हैदराबाद पुलिस की जानिब से तकरीबन 2000 अहलकारों पर मुश्तमिल सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की नशरियात इतवार 28 जून की सुबह 11 बजे आकाशवाणी से नशर की जाएंगी। इस प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म अपने ख्यालात मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के साथ शेयर करेंगे। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एयर न्यूज़ की वेबसाइट और मरकज़ी वज़ारत इत्तला'आत व नशरियात के यूट्यूब चैनल्स पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी खिताब के बाद इसका तेलुगु तर्जुमा भी फौरन नशर किया जाएगा। रियासती वजीर अडलूरी लक्ष्मण कुमार ने कहा कि जगतियाल ज़िले के रावला वागू प्रोजेक्ट के लिए महकमे जंगलात से दरकार मंजूरी का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, ताकि इसी बरसात के मौसम में किसानों को आबपाशी के लिए पानी फराहम किया जा सके। वजीर ने जगतियाल के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार के हमरा बीरपुर मंडल में वाक़ इस प्रोजेक्ट का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आइंदा 15 दिनों में प्रोजेक्ट के गेटों की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद पानी ज़खीरा करने के इकदाम शुरू किए जाएंगे, ताकि किसानों को बर वक्त आपाशी की सहूलत फराहम की जा सके। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने कहा कि बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन इस महीने की 28 तारीख से 3 दिनों तक रियासत के दौरे पर होंगे। उन्होंने कहा कि 28 तारीख को वो हैदराबाद पहुंचेंगे और शमशाबाद के रंगागढ़ी जिले में पार्टी के दफ्तर से 10 अजला के बीजेपी ऑफिसों का इफ्तिताह करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने मतालबा किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी वाजे करें कि मरकजी वजीर CR पाटिल ने किन मंसूबों का जिक्र किया था। पार्टी के रियासती दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला तुंगभद्रा मंसूबे पर बहुत बातें कर रहे हैं और बीजेपी तुंगभद्रा के गेट्स तक इनका खैर मुकदम करती है। उन्होंने मतालबा किया कि CR पाटिल ने किन मंसूबों के बारे में बात की, इसकी वजाहत की जाए। रामचंद्र राव ने इल्ज़ाम लगाया कि BRS और कांग्रेस दोनों जमातों ने तेलंगाना के अवाम को धोखा दिया है। आप आकाशवाणी से खबरें सुन रहे हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हैदराबाद के इलाकाई खबरों के शोबे X हैंडल @airnews_HYD को फॉलो करें और एयर न्यूज़ हैदराबाद चैनल को सब्सक्राइब करें। बैन अल-अक़वामी यौम इंसदाद मंशियात के मौके पर आज राजन्ना सिरसिला ज़िला मरकज़ में ईगल फोर्स की जानिब से एक बेदारी रैली निकाली गई। गवर्नमेंट वीप और वेमुलवाड़ा के रुकन असम्बली अदी श्रीनिवास, ज़िला कलेक्टर गरिमा अग्रवाल और एडिशनल SP चंद्रैया ने मुश्तरका तौर पर झंडी दिखाकर रैली का आगाज़ किया। इस मौके पर अदी श्रीनिवास ने नौजवानों से मंशियात से दूर रहने और सेहतमंद माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करने की अपील की। जबकि इस सिलसिले में राजन्ना सिरसिला ज़िले के वेमुलवाड़ा रूरल मंडल के हनमाजी पेड़ गांव में महकमे पुलिस के ज़ेर एहतमाम इंसदाद मंशियात से मुतालिक एक आगाही प्रोग्राम भी मुनाक़द किया गया।

0: जिसमें वेमलवाड़ा के DSP श्रीनिवासलू ने मंशियात के मज़र असरात से मुतालुक अवाम को आगाह करते हुए इस लानत के खात्मे के लिए इज्तिमाई ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया।
1: అదే విధంగా ఈడీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కూడా అనేక వింగ్స్ కలిపి ప్రభుత్వ శాఖలు కలిపి సమాజంలో ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు సమాజంలో ఉన్నటువంటి బాధ్యత కలిగినటువంటి పౌరులు సోషల్ ఇవిల్ గా భావించి
2: అతి సమాచారాన్ని లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ కు అందే
0: आसिफाबाद ज़िला सिरपुर के BJP रुकन असम्बली पालवाई हरीश बाबू ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के फ़ंड के ज़रिए रियासत में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। रुकन असम्बली ने असम्बली हलके के बारीगुड़ा शूपुर में कौमी देही रोज़गार स्कीम के तहत मंजूर शुदा 2 महिला समख्या इमारतों और गवर्नमेंट स्कूल के लिए 4 दीवारी की तामीर का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि रोज़गार स्कीम के ज़रिए बारीगुड़ा गाँव में गुज़िश्ता 2.5 सालों के दौरान 1 करोड़ से ज़ायद के तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। आसिफाबाद ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर सीताराम ने कहा कि 28 तारीख को मुनक़द होने वाले खुसूसी पल्स पोलियो डे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले के 15 मंडलों में 667 पोलियो मराकज़ कायम किए जा रहे हैं ताकि हर बच्चे को पोलियो से बचाव के ख़तरे पिलाए जा सकें। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत भर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुतअद्दिद अजला में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। आज मंचेरियाल, जगतियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुल्क और भद्राद्री कोत्तागोडेम अजला में शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि कल आदिलाबाद, निज़ामबाद, वक़ाराबाद, संगारेड्डी समेत कई अजला में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है, जबकि परसों हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी अजला में भी शदीद बारिश होने की पेश कयासी की गई है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने अवाम से अपील की कि वो मंशियात से पाक तेलंगाना के मकसद को हासिल करने में ताउन करें। तेलंगाना हुकूमत ने संजय जाजू को रियासत का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। तेलुगु रियासतों में आज मुहर्रम के मौके पर योम आशुरा मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। बीबी का अलम जुलूस के पुरमन इनेकाद के लिए पुलिस की जानिब से वसी तर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। और हैदराबाद महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत भर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुईं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है

0: कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Home Minister Amit Shah laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India today. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th APEC-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that drug menace threatens national security, social stability, economic interests and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war.
2: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics. The next 3 years will determine whether drugs prevail over us or we prevail over drugs. My humble appeal to all of you is that for the future of our nation over the next 100 years, this is a battle we must win. Win with the determination and win through our collective efforts.
1: The Ministry of Health and Family Welfare has proposed amendments to the Drugs Rules 1945.

0: अथ वार्ताः विशदीकृत्य गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अद्य मादकद्रव्यानां विरुद्धं संयुक्तसङ्घर्षस्य आह्वानं विहितम्। मादकद्रव्यानां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै, सामाजिकस्थिरतायै, आर्थिकहिताय, यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतृभ्यः, युवभ्यः, मातृभ्यः अस्य सङ्घर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुं च आग्रहम् अकरोत्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां नार्को कोऑर्डिनेशन केन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीयसभाम् अभिसम्बोधयन् एतानि वक्तव्यानि प्रायच्छत्।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाहः अवोचत् यत् चतुरुत्तरद्विसहस्रतः चतुर्दशाधिकद्विसहस्रपर्यन्तम् अधिकारिणः प्रायः 26,00,000 किलोग्राममितं संश्लेषितमादकद्रव्याणि गृहीतवन्तः। तस्यापेक्षया 14,00,000 26,00,000 गृहीतानि संश्लेषितमादकद्रव्याणि 18,11,000,000 किलोग्राममितं यावत् वर्धितम्। सः अवोचत् यत् मादकद्रव्याणां व्यापारस्य विरुद्धं सर्वकारस्य अभियानम् अविरतं प्रगतिं कुर्वदस्ति इति अङ्कैः ज्ञायते। मादकद्रव्याणां निवारणस्य प्रयत्नानां विषये श्रीशाहः अवोचत् यत् नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इत्यनेन मादकद्रव्याणाम् अपराधसम्बद्धानां सूचनानां समयोचित आदान प्रदानार्थम् अनेकानि ऑनलाइन पटलानि विकसितानि सन्ति।
1: पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवोचत् यत् नशामुक्त भारत अभियानं जनसहभागित्वेन चालितं जनान्दोलनं जातम्। मादकद्रव्यमुक्त भारत निर्माणस्य महत्वविषये सामाजिक न्याय सशक्तीकरण राज्यमन्त्रिणः बी.एल्.वर्मणः लेखं विनिमयीकुर्वन् श्रीमोदी एतत् अवोचत्। उत्तरप्रदेश आरक्षकेण श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासस्य दानराशि स्तेय प्रकरणे FIR इति प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण 8 जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशने विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसनानन्तरं पञ्जीकृतमासीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां, दानानां च स्तेयसम्बन्धिनाम् आरोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखमागतम्। न्यासस्य अनुरोधे मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन एकस्य SIT दलस्य गठनस्य आदेशः प्रख्यापितः। न्यासीयसदस्यस्य कृष्णमोहनस्य लिखित अभियोगाधारेण श्रीरामजन्मभूमि आरक्षककेन्द्रे अयम् अभियोगः प्रविष्टः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। ह्यः वाशिङ्ग्टन् नगरे आयोजिते द्वितीये पैक्सिलिका शिखरसम्मेलने भारतेन सह अन्यैः 34 देशैः कृत्रिमबुद्धिमत्ता प्रविधीनां विकासाय विश्वसनीय दृढ आपूर्ति श्रृङ्खलायाः निर्माणार्थम् अमेरिका नेतृत्वे एकस्मिन् महत्वपूर्ण प्रस्तावे हस्ताक्षरं विहितम्। आर्थिक विषयानाम् अमेरिका उपसचिवः जैकब हेल्बर्गः

0: మీరింతవరకు చిత్రసీమ సినిమా పాటలు విన్నారు. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 8:45. వార్తా ప్రసారాలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే అవుతాయి.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ సంధ్యా కే సాథ్ మే విశాల్ శర్మ. मुख्य समाचार. गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया. नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा. केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी. वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई. भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत. भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे. और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे. अब समाचार विस्तार से. गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया. नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की. इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे. इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है. गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया.
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा. सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा. तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं.
1: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं. उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है.
2: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया. इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए. एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए.
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है. उन्होंने कहा कि ये आंकड़े

आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमरीका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमरीका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियेनचेन को और किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया।

0: वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया, तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Center to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President JD Vance. Indian shooters finish at the top in ISSF Junior World Championship in Germany with 24 medals, including 7 gold. And in US Open Badminton, India's Ronak Chauhan stuns top seed Chou Tin Shen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikant and 3 women shuttlers also reach the quarters. And now the news in detail. Home Minister Amit Shah today laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that the drug menace threatens national security, social stability, economic interests, and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war. The Home Minister stressed that better coordination and the use of technology are essential for strengthening the country's campaign against drugs and drug trafficking networks.
2: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics. The next 3 years will determine whether drugs prevail over us or we prevail over drugs. My humble appeal to all of you is that for the future of our nation over the next 100 years, this is a battle we must win. Win with the determination and win through our collective efforts.
1: Speaking about the anti-narcotics efforts, Mr. Shah said that the Narcotics Control Bureau has developed several online portals to facilitate the timely sharing of information related to drug crimes. He urged all chief secretaries and directors general of police to upload details of drug-related cases on these portals within a fixed timeline. He said that timely sharing of information would help the government to monitor cases more effectively and provide states with necessary feedback and suggestions to improve investigations and enforcement. The Home Minister also launched a drug disposal fortnight under which over 2,09,000 kilograms of seized narcotic substances valued at around 6,000 crore rupees will be destroyed. Minister of Commerce and Industry P.

0: स्क्रीन नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।